0: लागू है।
1: जहां पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
2: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
3: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
4: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
3: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
4: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
3: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
5: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 1111 4 to 5 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
0: शराइत जवाबत लागू है।
6: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
9: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
10: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं।
12: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
11: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है और space भी काफी है।
12: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
11: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
12: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ, इसमें 8 seats का option है।
11: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
12: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
13: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
14: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
15: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
9: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
10: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।

0: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
1: ओ खैरे बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
0: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह तो?
0: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
1: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
0: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111111425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
2: शरायत ज़वाबत लागू है।
3: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
4: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
1: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
0: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह से?
0: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
1: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
0: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111111425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
2: शराइत ज़वाबत लागू है।
5: सुनिए मालूमात आमा का प्रोग्राम पाक मिशन सोसाइटी के तआवुन से, जिसमें शामिल होंगी मुल्क की नामवर समाजी शख्सियात। तो सुनना मत भूलिएगा रोजाना सुबह 10:30 बजे सिर्फ FM 100 लाहौर और इस्लामाबाद स्टेशन से।
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: हाई फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर।

0: your location for maximum music. This program was brought to you by
1: Sir Subs Pakistan Challenge ki audio par apni video upload kare aur paiye jeetne ka mauka iPhone 17 Pro Max electric bike aur shandar qeemti inamat
0: and
2: Shaukat Khanum Karachi ki takleef
3: aaj hi donate karne ke liye 0800-11555 par call kare ya hamari website www.shaukatkhanum.org.pk visit kare
0: and
4: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: and
5: we are telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
0: and
6: purani gaadi chhodo nayi gaadi ka khwab pura karne chalo to abhi apni kareebi HPL branch chalo ya apply karo online ye offer mehdood muddat ke liye hai
0: and
7: try all new vatika shampoo nourishes hair naturally
8: It's 10 a.m. The Shan Check is brought to you by
9: HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking, aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account.
10: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है
11: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी
5: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी राब्ता कर सकते हैं
9: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
12: वाटी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर रावल पिंडी तो जीतती नी जाहिदा गोल्ड कॉइन हुन तुसी भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनाम जीत सकदे हो बस वाटी का शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटी का शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो ट्राई ऑल न्यू वाटी का शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
9: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
13: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूं वाला एक्सक्यूज और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना
14: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां
8: This program is brought to you by
15: HPL Sari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.

0: स्टोन पहनने से, येलो गेट पहनने से आपकी डेट की हिलजुल हो जाएगी। जैसे मैं आपसे डेट्स बता देता हूँ कि इस डेट में इस महीने में आपका ये काम ये शी शादी हो जाएगी, तो फिर आपकी डेट भी आ जाएगी। इसलिए जो महानोट नंबर बता रही है आपसे, वाश्रम के नंबरों पर रब्ता कीजिए, फिर आपको डिटेल वहां से मिल जाएगी।
1: जी जनाब, नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉल भी अभी आपकी नहीं पिक हो सक रही, क्योंकि हमारी सारी लाइंस जो हैं वो ब्लिंक कर रही हैं, कॉल्स हम महदूद ही ले सकते हैं, टाइम हमारे पास एक घंटे का होता है, तो आपने ये नंबर नोट करना है। आप डॉक्टर जलील असलम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, इस नंबर पर बात कर सकते हैं उनसे। नंबर है जी 0333-555-0011। अभी एक और कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है वो लकी कॉलर जिनकी कॉल मिली। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
2: वालेकुम सलाम, आप क्या हाल है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन कहाँ से बात कर रही है?
2: मैं सनोबर बात कर रही हूँ, डुमन से।
1: जी सनोबर, किसके लिए जायजा बनवाना चाहती हैं, किसकी डिटेल्स शेयर करेंगी?
2: आप ही, मैं अपने लिए बनवाना चाहती हूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 महीने की 21 तारीख सन 2000।
1: ठीक है, सन 2000 और 21 नवंबर, राइट?
2: जी।
1: अच्छा, सनोबर पूरा नाम क्या है आपका?
2: नोबर हसन। मैं इस हवाले से बात करना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब होगी और लव मैरिज होगी या जैसे
1: ठीक है
2: अच्छी रहेगी अगर लव मैरिज होगी।
1: मदर का नाम क्या है?
2: इशरत परवीन।
1: ठीक है सनोबर, इस साल 20 साल की हो जाएंगी। ठीक है, अब पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि क्या कहते हैं डॉक्टर साहब जी।
0: और आपने उनकी उम्र बता दी है और अब 20 साल की हो जाएगी, तो पाकिस्तान की शादी हो जाएगी
1: उनकी, इंशाल्लाह।
0: जी सनोबर, आपकी शादी में रुकावट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लव मैरिज नहीं होगी आपकी, और लव की तरफ जिद ना कीजिएगा। आप जिद्दी बहुत है सनोबर, आप जिद में ना अपने काम कई दफा करवा लेती हैं, और आप और कीजिएगा वही काम उल्ट पड़ जाते हैं, उसके बाद नुकसान भी हो जाता है। इसलिए शादी एक ऐसा मामला है जो सारी जिंदगी का आपने गले में हार लटका लेना है, तो इस हार को लटकाने के लिए आपके जायचे के मुताबिक, और जायचा किस तरह से है, आपके सितारों की रोशनी में हॉरिस्कोप, स्टार्स, न्यूमरोलॉजी एंड इस्तखारा, ये तमाम चीजों को लेकर और इल्म जफर, इन तमाम चीजों की कैलकुलेशन के बाद मैं जवाब देता हूं। तो आपके जायचे में ये आ रहा है कि लव मैरिज की कोशिश ना करना, लव मैरिज में आप जिद कर करके लव मैरिज करवा लेंगी, लेकिन वो लव मैरिज 3 महीने बाद फ्लॉप हो जाएगी। इसलिए ये जिंदगी का संगम है, आपने सारी उम्र आपने जिंदगी गुजारनी है, शादी एक ही होनी चाहिए और सुथरी होनी चाहिए, लिहाजा आप अपनी अरेंज मैरिज की तरफ जाएं, और वो आपके पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं करेंगे, और वो रिश्तेदारों में रिश्ता करेंगे, लेकिन जिस रिश्तेदारों में करेंगे, जिस तरफ आपका माइंड जा रहा है ना, उधर ना कर दवान, उठे नहीं करेंगे, उधर नहीं करेंगे, वहां नहीं होगी, वो करीबी रिश्तेदार वहां नहीं होगी, ये दूर के रिश्तेदार हैं, आपके फादर की साइड से रिश्तेदार हैं, अभी आप उनको नहीं जानती, लेकिन आपके वालिद के रिश्तेदार हैं, वहां पे आपका रिश्ता तय होगा और आपकी शादी ठीक 1 साल बाद हो जाएगी। आप 21 की हो गई, 21 में आपकी शादी होगी, और कोई रुकावट नहीं है उसमें, जोर शोर जिद ना करना, लव मैरिज की तरफ मत जाए, ठीक है कोई बात नहीं, अगर सलाम दो हो जाती है तो आप छोड़ दें, लेकिन आप शादी अपने वालदेन की रजामंदी से करें। इसके साथ अपना स्टोन जरूर पहन लीजिएगा, आपका लकी स्टोन है गोल्डन टोपाज, आप गोल्डन टोपाज को राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहन लें, जो कि सिर्फ 11 कैरेट का होना चाहिए। इसको पहनने से ये होगा कि आपकी जो तबीयत में बेचैनी है वो खत्म हो जाएगी, आप बात बात पे गुस्से में जो आ जाती है वो खत्म हो जाएगा, और आप सुकून से रहेंगी सनोबर। जी मां
1: बिल्कुल। और ये स्टोन आपने किस तरह हासिल करना है, आपने कॉन्टेक्ट नंबर पे इस पे कॉल कर लेनी है सिवाज स्टोन की, दैट इज 0333-555-0011। डॉक्टर साहब, अगर हम कोई भी स्टोन किसी एक मकसद के लिए पहनते हैं, शादी के लिए पहनते हैं, तो जब शादी हो जाए तो हमें वो स्टोन उतार देना चाहिए या पहने रखना चाहिए?
0: मानव जी, अगर आप चाहती हैं कि शादी में हर दिन ईयर लगे कि ये लव मैरिज ही है, ये लव मैरिज ही है, ये लव मैरिज बुढ़ापा आ जाए, तो आपको वो स्टोन नहीं उतारना चाहिए, बल्कि उस स्टोन को चमका के रखना चाहिए, और गौर करना चाहिए कि उस स्टोन में ना कोई लाइन पड़े, ना कोई सुराख आए, ना क्रैक हो, और हर रोज उस स्टोन के ऊपर कोई खुशबू लगा लेनी चाहिए। अगर रोज की मिल जाती है गुलाब की खुशबू मिल जाती है, जो अतर होता है गुलाब को, वो लगा लें तो बहुत ही अच्छा होगा, तो ये शादी हमेशा कामयाब रहेगी। और जो 3 महीने 6 महीने बाद जो डोमेस्टिक हालात खराब हो जाते हैं मियां बीवी के दरमियान, वो नहीं होंगे, और मियां जो है अगर बीवी ने पहना होगा तो मियां सारी जिंदगी

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।

0: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
1: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
2: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
2: सुनिए मालूमाते आमा का प्रोग्राम पाक मिशन सोसाइटी के तावुन से, जिसमें शामिल होंगी मुल्क की नामवर समाजी शख्सियात. तो सुनना मत भूलिएगा रोजाना सुबह 10:30 बजे सिर्फ FM 100 लाहौर और इस्लामाबाद स्टेशन से.
3: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर. वी ऑल ड्रीम ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, बट ड्रग्स are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Yeh paigham hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by HBL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zara yalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
1: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो. ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है.
5: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा. बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी.
6: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं. आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी राब्ता कर सकते हैं.
0: This program is brought to you by
7: शौकत खानम. लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
8: शौकत खानम कराची की तकलीफ.
9: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
0: FM
10: 100 पाकिस्तान.
0: अजान जोहर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से.
11: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम. लाहौर और उसके मजाफात में नमाज जोहर का वक्त हो गया है.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM
2: 100। इरशादे बारी ताला है, कहो क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारें जो ना हमारा भला कर सके ना बुरा, और जब हमको अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा दिया तो क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं? फिर तो हमारी मिसाल ऐसे हो जैसे किसी को जिन्नात ने जंगल में भुला दिया हो और वो हैरान हो रहा हो, और उसके कुछ रफीक हों जो उसको रास्ते की तरफ बुलाएं कि हमारे पास चला। कह दो कि रास्ता तो वही है जो अल्लाह ने बताया है, और हमें तो ये हुक्म मिला है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमाबरदार बने। सूरह अनाम।
1: FM 100।

0: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
1: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
2: ना बार बार क्लिनिक जाने की झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
3: मजीद मालूम के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रब्ता कर सकते हैं।
4: This program is brought to you by
5: शौकत खानम। लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन,
6: शौकत खानम कराची की तकनीक।
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.शौकतखानम.org.pk विजिट करें।

0: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
1: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
2: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
1: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
2: टापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
0: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और रابطہ करें 0300-555-0011 पर।
5: वाजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर रावल पिंडी तो जीतती नी जाहिदा गोल्ड कॉइन। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: शौकत खानम। लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन,
8: शौकत खानम कराची की तकदीर।
9: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।

0: This program was brought to you by
1: Shaukat Khanum. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeel.
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें।

वाजिका हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर ट्रैवल पिंडी तो जीतती नी जाहिदा गोल्ड कॉइन हुन तुसी भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली

आम चीजों पर समझौता क्यों करें। श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल। FM 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100.

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100।
2: इरशाद बारी ताला है, जो लोग काफिर हैं अपना माल खर्च करते हैं कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें, सो अभी और खर्च करेंगे, मगर आखिर वो खर्च करना उनके लिए मुजिब अफसोस होगा और वो मغلوب हो जाएंगे और काफिर लोग दोजख की तरफ हांके जाएंगे। सूरह अनफाल।
1: FM
0: 100। सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना ना भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रابطہ करें 03005500011 पर।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी
2: ओ खैर है बरकतिया बड़ा मस्त होके गा रहे हैं
1: ओ सते खैरा ने HBL ज़रई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है
2: HBL ज़रई बैंक की वजह तो
1: ओए आहो बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया ट्रैक्टर भी ले लेता बी खाद भी चंगी आली
2: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा
3: आहो पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म मच्छी फार्म ज़रई जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो
4: शरायत ज़वाबत लागू है
5: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखादेही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
7: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है
8: ना बार बार क्लिनिक जाने की झंझट और ना ज्यादा खर्चा बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी
9: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी राब्ता कर सकते हैं
10: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली
2: ओ खैर है बरकत है बड़ा झूम झूम के गा रहा है
1: खैर है HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है
2: HBL ज़रई बैंक की वजह से
1: हाँ बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला
2: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा
3: जी हाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म ज़रई आलात और के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें
4: शरायत ज़वाबत लागू है
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
11: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं
12: ऑफ कोर्स इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड Grand, bold and hard to miss.
11: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है, और space भी काफी है.
12: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.

0: अच्छी है, पर मुझे तो 8 सीटर चाहिए थी।
1: जी बेगम साहिबा, आपके लिए पैलेसेड स्मार्ट ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
0: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
1: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
4: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
6: वाजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर रावल पिंडी तो जीतती नी जाहिदा गोल्ड कॉइन। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
8: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
9: सर सब्स पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका iPhone 17 Pro Max, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात।
5: एंड
4: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
8: एंड
10: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
8: एंड
11: वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
5: एंड
12: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।
5: एंड
9: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।

0: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
1: ओ खैर है बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
0: ओ सत्ते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह तो?
0: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
1: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
0: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
2: शरायत ज़वाबत लागू है।
3: सर, सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिंसों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
4: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
1: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
0: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह से?
0: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
1: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
0: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
2: शरायत ज़वाबत लागू है।
5: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
6: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस।
5: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
6: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
5: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
6: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ, इसमें 8 seats का option है।
5: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
6: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इबलाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसम वेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई? महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। pta.txt महफूज है, लेकिन pta.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खासतौर पर मोहतात रहें, खसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटेबल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
9: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
10: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
7: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ۔ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
11: This program is brought to you by
12: Try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.

0: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
1: ओ खैरे बरकतिया, बड़ा मस्त हो के गा रहे हैं।
0: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह तो?
0: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
1: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
0: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई औजार ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
2: शरायत ज़वाबत लागू है।
3: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
4: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
3: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
4: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
3: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
4: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ, इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
3: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
4: Experience the all new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
5: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डाली डाली।
1: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
0: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह से?
0: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
1: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
0: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद

0: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
1: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
0: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
2: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मज़ीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें।
3: शराइत ज़वाबित लागू है।
4: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
5: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा। बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
6: मजीद मालूमात के लिए विया टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप विया के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
9: शौकत खानम कराची की तकदीर।
10: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: बाजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर रावल पिंडी तो जीतती नी जाहिदा गोल्ड कॉइन। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
12: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।

0: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में, जरूर आइएगा।
1: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
2: ओ खैर है बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
1: ओ सत्ते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
2: HBL जरई बैंक की वजह तो?
1: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लेता, बी खाद भी चंगी आली,
2: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
1: आहो पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
3: शरायत ज़वाबत लागू है।
4: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिंसों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब्स हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब्स नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
5: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
2: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
1: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
2: HBL जरई बैंक की वजह से?
1: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
2: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
1: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
3: शराय तो जवाबत लागू है।
6: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
7: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
6: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
7: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
6: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
7: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ, इसमें 8 seats का option है।
6: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
7: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: One Station 100 FM।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब वहां HBL।
10: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
11: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
12: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
13: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
14: ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशियस हेयर नेचुरली।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100। इरशादे बारी ताला है, और कहो कि सब तारीफ अल्लाह ही को है, जिसने ना तो किसी को बेटा बनाया है और ना उसकी बादशाही में कोई शरीक है, और ना इस वजह से कि वो आजिज़ और नातवा है कोई उसका मददगार है, और उसको बड़ा जानकर उसकी बड़ाई करते रहो। सूरह बनी इसराइल।
2: FM 100।

0: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
1: ओ खैर है बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
0: ओ सत्ते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह तो?
0: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसी वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
1: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
0: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवर लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111111425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
2: शरायत ज़वाबत लागू है।
3: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रابطہ करें 0300-555-0011 पर।
4: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
1: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
0: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह से?
0: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
1: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
0: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111111425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें।
2: शरायत ज़वाबत लागू है।
5: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
6: ऑफ कोर्स, इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड, ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस।
7: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
6: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
7: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
6: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
7: यानी family के लिए भी perfect और no compromise on looks। अब समझ आया, सब क्यों देख रहे थे?
6: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
8: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
9: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
11: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
12: शौकत खानम, कराची की तकनीर।
13: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
14: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।
15: पार्टी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर रावल पिंडी तो जीतती नी जाहिदा गोल्ड कॉइन हुन तुसी भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनाम जीत सकदे हो बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
16: महरारा देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम
17: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
15: ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली

0: HBL ਜ਼ਰਾਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ
1: ਓਏ ਆਹੋ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਬੀ ਖਾਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਾਲੀ
0: ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ
2: ਆਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ HBL ਜ਼ਰਾਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰਾਈ ਔਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੌਖੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਰਾਸ ਹੋਰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈ 111111425 ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ
3: ਸ਼ਰਾਇਤ ਜ਼ਵਾਬਤ ਲਾਗੂ ਹੈ
4: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना
5: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में जरूर आइएगा
6: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली
7: ओ खैर है बरकत है बड़ा झूम झूम के गा रहा है
1: खैर ही खैर है HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है
7: HBL ज़रई बैंक की वजह से
1: हाँ बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला
7: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा
2: जी हाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म ज़रई आलात और के लिए भी कर्ज़े की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज मजीद मालूमात के लिए अभी 111111425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें
3: शरायत ज़वाबत लागू है
8: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं
9: ऑफ कोर्स इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड ग्रैंड बोल्ड एंड हार्ड टू मिस
10: बाहर से तो ग्रैंड है अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है
9: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
10: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
9: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
10: यानी family के लिए भी perfect और no compromise on looks. अब समझ आया. सब क्यों देख रहे थे
9: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
11: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
12: सुनिए मालूमाते आमा का प्रोग्राम पाक मिशन सोसाइटी के तआवुन से जिसमें शामिल होंगी मुल्क की नामवर समाजी शख्सियात तो सुनना मत भूलिएगा रोजाना सुबह 10:30 बजे सिर्फ FM 100 लाहौर और इस्लामाबाद स्टेशन से
1: खुशी नाल नच्चे हर पत्ता टैणी टैणी
7: ओ खैर है बरकतिया बड़ा मस्त होके गा रहे हैं
1: ओ सत्ते खैरा ने HBL ज़रई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है
0: HBL ज़रई बैंक की वजह तो
1: ओए आहो बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया ट्रैक्टर भी लै लिता बी खाद भी चंगी वाली
0: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा
2: आहो पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म मच्छी फार्म ज़रई ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੌਖੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਰਾਸ ਹੋਰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈ 111111425 ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ
3: ਸ਼ਰਾਇਤ ਜ਼ਵਾਬਤ ਲਾਗੂ ਹੈ
13: ਹਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਆਈ ਐਮ ਮਿਕਾਲ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਐਂਡ ਟੁਡੇ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਐਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਬਟ ਐਜ਼ ਸਮਵਨ ਹੂ ਕੇਅਰਸ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਆਲ ਡ੍ਰੀਮ ਆਫ ਸਕਸੈਸ ਐਂਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਬਟ ਡਰੱਗਸ ਆਰ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰੋਇੰਗ ਆਰ ਡ੍ਰੀਮਸ ਲਾਈਵਸ ਐਂਡ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
14: Ye paigham hukumat Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
11: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Phoenix laga aur bhul ja. खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
2: ओ खैरे बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
1: ओ सते खैरा ने, HBL जरिए बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।

0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय
1: सर सब्स पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात
0: एंड
2: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें
0: एंड
4: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
0: एंड
5: वी आर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
0: एंड
6: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली।
0: It's 7 PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. जहाँ खाब वहाँ HBL.
7: खुशी नाल नच्चे हर पत्ता टैणी टैणी।
8: ओ खैर है बरकतिया बड़ा मस्तो के गा रहे हैं।
7: ओ सत्य खैरा ने HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
8: HBL जरई बैंक की वजह तो
7: ओए आहो बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया ट्रैक्टर भी ले लिता बी खाद भी चंगी आली
8: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
7: आहो पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म मच्छी फार्म जरई ते जनरल कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
9: शरायत ज़वाबत लागू है।
10: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
11: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखादही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
12: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
13: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
8: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
7: खैर ही खैर है HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
8: HBL जरई बैंक की वजह से?
7: हाँ बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
8: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
7: जी हाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म जरई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
9: शरायत ज़वाबत लागू है।
14: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
15: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
2: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
16: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो। क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: वाजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर रावल पिंडी तो जीतती नी जाहिदा गोल्ड कॉइन। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते तेरा सारे इनाम जीतो। पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
17: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL सरी बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत।
18: एंड पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है।

0: टेंशन कई को लेता जानी सब मिलेगा सब मिलेगा।
1: बुकर में खड़ी है किस्मत लेके नोट सारे।

0: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी
2: ओ खैर है बरकतिया बड़ा मस्त होके गा रहे हैं
1: ओ सते खैरा ने HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है
2: HBL जरई बैंक की वजह तो
1: ओए आहो बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया ट्रैक्टर भी ले लिता बी खाद भी चंगी आली
2: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा
3: आहो पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म मच्छी फार्म जरई ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज होर मालूमात लई 111-111-425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो
4: शरायत ज़वाबत लागू है
5: One Station
6: 100 FM
7: होने जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑटो शो 2026 18, 19 और 20 सितंबर को एक्सपो सेंटर लाहौर में जरूर आइएगा
8: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली
2: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है
1: खैर ही खैर है HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है
2: HBL जरई बैंक की वजह से
1: हाँ बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला
2: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा
3: जी हाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म जरई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें
4: शरायत ज़वाबत लागू है
5: One Station
6: 100 FM
9: मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेक बुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
10: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें जय सार्फिन के लिए *275 हैश जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनोर सार्फिन के लिए *342 हैश अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए
11: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है
9: मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेक बुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
12: खालिस अज्जा भरोसेमंद शिफा श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा
9: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेक बुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
13: FM 100

0: खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
1: ओ खैरे बरकतिया, बड़ा मस्त हो के गा रहे हैं।
0: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह तो?
0: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
1: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
2: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज। होर मालूमात लई 111111425 ते हुणे कॉल करो या नेड़े ब्रांच दे नाल राबता करो।
3: शरायत ज़वाबत लागू है।
4: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
5: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डाली डाली।
1: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
0: खैर ही खैर है, HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
1: HBL जरई बैंक की वजह से?
0: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
1: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
2: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111111425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें।
3: शराइत ज़वाबत लागू है।
6: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रابطہ करें 0300-555-0011 पर।
7: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
10: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
11: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
10: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
12: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
11: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
10: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
12: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
11: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
12: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
10: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
11: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
10: आइए वेट से आगे का सोचें।
13: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
14: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
15: शौकत खानम, कराची की तकलीफ। آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
16: واجی کا ہفتہ وار لکی ڈرا وینر راول پنڈی تو جیتتی نی زاہدہ گولڈ کوائن ہن تسی بھی ہر ہفتے کار ای وی بائک گولڈ کوائنز تے ہور بے شمار انعامات جیت سکدے ہو. بس واٹیکا شیمپو دی بوٹل سکریچ کرو تے 13 سارے انعام جیتو. پچھلے ہفتے دے ونر دا نا جانن لئی واٹیکا شیمپو دے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کرو. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نریشیز ہیئر نیچرلی.
17: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
18: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
19: السلام علیکم پاکستان.
20: اذان عشاء پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
21: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عشاء کا وقت ہو گیا ہے.

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM
2: 100। इरशादे बारी ताला है, जिन लोगों ने नेकुकारी की उनके लिए भलाई है और मजीद और भी, और उनके चेहरों पर ना तो स्याही छाएगी और ना रुसवाई, यही जन्नती है कि इसमें हमेशा रहेंगे। और जिन्होंने बुरे काम किए तो बुराई का बदला वैसा ही होगा और उनके चेहरों पर जिल्लत छा जाएगी और कोई उनको अल्लाह से बचाने वाला ना होगा। उनके चेहरों की स्याही का ये आलम होगा कि उन पर गोया अंधेरी रात के टुकड़े उड़ा दिए गए हैं, यही दोस्ती है कि हमेशा इसमें रहेंगे। सूरह यूनुस

0: ਹੋਰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈ 111114 ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ।
1: ਸ਼ਰਾਇਤ ਜ਼ਵਾਬਤ ਲਾਗੂ ਹੈ।
2: ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਕਿਸੇ ਕਾ ਕੱਲ ਭੇਜਤਾ ਹੂੰ ਵਾਲਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਚਾਹੀਏ। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
3: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
4: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
5: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
4: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
5: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
4: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
0: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111114 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
1: शरायत जवाबत लागू है।
6: One station.
7: 100 FM. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
6: One station.
8: 100 FM.
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
10: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
11: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Phoenix laga aur bhul ja. खुशी नाल नचे हर पत्ता टैणी टैणी।
2: ओ खैरे बरकतिया, बड़ा मस्त होके गा रहे हैं।
1: ओ सते खैरा ने, HBL जरई बैंक की वजह तो फसल बहुत चंगी हो गई है।
2: HBL जरई बैंक की वजह तो?
1: ओए आहो, बड़ी आसानी नाल ते बगैर किसे वड्डे रौले तो सही कर्जा जे मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिता, बी खाद भी चंगी आली,
2: ते हुण मैनू पोल्ट्री फार्म वास्ते भी कर्जा मिल जाएगा।
1: आहो, पाकिस्तान दे सब तो वड्डे बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग दे कोले तुहाडे वास्ते पोल्ट्री फार्म, मच्छी फार्म, जरई ते जानवरां लई कर्जे दी सौखी सहूलत ते तुहाडी खुशहाली दराज।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
2: वन स्टेशन 100 FM।
3: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।

100 FM, your location for maximum music. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. जिंदगी और मौत का सवाल बार बार मेरे जहन में गर्दिश करता है। क्या किस्मत की तमाम ठोकरें सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हैं? क्या किस्मत के तमाम चक्रों की गर्दिश खत्म कर देना ही जौहर-ए-मर्दानगी है?

0: जहां पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज वी फाइव शेयरिंग पैकेजेस, पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की वी फाइव ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
1: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और राब्ता करें 0300-555-0011 पर।
2: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।

0: 100 FM, The Music Machine.
1: भाइयों घबराना नहीं, यहाँ नहीं पढ़ सकती कोई रे, खत्म हो गया सबका वेट, क्योंकि अब आ

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: HPL Zari Banking के पास है पोल्ट्री फार्म फिश फार्म सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत
2: जहाँ पाँच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पाँच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पाँच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
3: One Station
4: 100 FM
5: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
7: शौकत खानम कराची की तकलीफ
8: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें

0: डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और राब्ता करें 0300 555 0011 पर।
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: शौकत खानम। लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन,
4: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800 11 555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.शौकतखानम.org.pk विजिट करें।

0: जहां पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
1: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanam. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeel.
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।

0: This program was brought to you by
1: Shaukat Khanum. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanum Karachi ki takmeel.
3: Aaj hi donate karne ke liye 0800-11555 par call karein ya hamari website www.shaukatkhanum.org.pk visit karein.
0: It's 11 p.m. This time check is brought to you by HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जरायम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, across Pakistan. This is FM 100.
1: एक मेरी पसंद का आपको गाना सुना रही हूँ, उर्दू का।